तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: करो पैसे।
1: क्या कर रही है तर्पी आ गया बावलट?
2: कौन?
1: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल, चल,